0: तुमको वाह भी
1: ते मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोलॉजी के वालों ने मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोनॉमिक फारु जानवे मानो फेरुवन जान जो कहते ने ते चारी आरुवन फुट निजू फा आताकुज आजा उन रो जाई लांजा इकोनॉमिक जाई आफाना मापनरुस न्यूल लमंडित ना फालंजा फापुआरी आफाना यंग चुमा मेचा के फावे निफिशी ना फालंजा फापुआरी तेज़ फानेरे ना न्यूल लायारु फा फाना पीना न्यूल आमनी फिल्टेन न्या अंदावनांफ

0: तुमको वावी
1: ते मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोलॉजी क्या बोलूँ अने मानना नहीं अंडरकिन आरा इकोनॉमिक फारु सानुए मानो फेरुवना जान जो के चीनी दे चारी आरुवना फुट निजू फा आताकुज़ आज़ा उन रो सही लांस इकोनॉमिक सही आफाना मापनरुस न्यूल्लमंड इतना फालंजा फापुआरी आफाना यंचुमा मेचा के फावे निफिशीना फालंजा फापुआरी दे चफानेरीना न्यूल्ला यारु फा फानापीना न्यूल आमनी फिल्टेनन्या अंदावनांफ